0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोस्टालिक बात सम्झोट आम हिन्दर लक्टेर हटबरा पानी बस्त बेर अस्तिम कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्टी ठिपकम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हा त धन्न ब्यालम बद्दिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारे बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बह्य ढ्यार जोखिम रहत उह मार बह्या से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान हिलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: होइन त्यहाँ के को भिड लाग्या छ के त्यस्तो जम्मै मान्छे त्यतै गइरहेछन् त
5: ल साल दिदी पनि सबै सामान एकै ठाउँमा पाइने अल पसल भएपछि अनि भिड लाग्दैन त
4: हामी कहाँ दैनिक उपभोगीका सम्पूर्ण सामग्री चिसो पेय पदार्थका सामानहरू कस्मेटिकका सामानहरू लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने जानकारी गराउँदछौ सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल भएको अल पसलको शाखा अब भुडिका बजार बर्दियामा अल पसल ठाकुरबाबा नगरपालिका एक कञ्चनपुर जाने बाटो भुडिगाउँ बर्दिया प्रोप्राइटर हेमराज आचार्य सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482974
6: गर्जन छ सधैँ बाघ छ बर्दियाको

0: ज्ञापन ऐन निर्माण गरौं।
1: कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय वीरेन्द्र नगर सुर्खेत।
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 92.7 मेगाहर्ज।

0: बच्चाहरूलाई घरमै बनेको पोसिलो खाना 6 महिनापछि अनिवार्य रूपमा शुरूवात गरौं। अन्न, गेडागुडी, साग सब्जी, फलफूल सहितको पोसिलो पूरक खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। पूरक खाना सँगसँगै 2 वर्षसम्म स्तनपान पनि जारी राखौं। रेडियो टाइगर 99.2 MHz र स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

0: गाइस रुको,
1: अबे कौन मर गया?
0: अबे हम सब
2: क्यों? मैच टूर्नामेंट के फाइनल सम्मेलन का डेट प्रीपोन हो गया।
0: कब?
2: तो कल।
0: फोन करेगा?
1: आयशा प्लीज ना।